शांति शांति शांति ही। हरि ओम तत्सत श्री साईश्वरार्पणमस्तु। बाय द डिवाइन ग्रेस ऑफ भगवान वी आर स्टडीइंग द उपनिषदिक शांति मंत्रस। इन दिस सीरीज वी हैव कंप्लीटेड द स्टडी ऑफ टू शांति मंत्रस, ओम सहना ववतु एंड तच्छयोरा वृणीमहे, एंड लास्ट वीक वी स्टार्टेड द स्टडी ऑफ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। टुडे लेट अस फर्स्ट लिसन टू द चैंटिंग ऑफ दिस मंत्र एंड देन लुक एट द मीनिंग।

है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे।